बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है मेरे मन लै लाह कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमै निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमै रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल।

जेबो तेरा पड़िया होवह को रह न परिय पाई। सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम की आया दारो है पी होसी जाए ना जासी सच्चा सृजनहारो। पांच वक्त निवाज गुजारै पढ़ै कतेब पुराणा नानक आखै गुर सदेई रहो पीणा खाणा। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सवान दो सवानी नाल पलके पौकै सदा बयाल। कूड़ शुरा मुठा मुरदार तान करूप रहा करतार। मैं पत की पंदना करनी की कार हौ बिगड़े रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार। रहा मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीस नात। काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलूकी वेस हौ ठगवाड़ा ठगी देस। खरा स्याणा बहुत